0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

0: नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैनी में थपलो साथ में गायर्द बाटो मुंपदे प्रसाद साहब बोट आज विक्रम सम्मत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 अगस्त 12 तारीख श्रावण 27 गते बुधवार औंशी तिथि अब स्तुति करूं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समा

यो शरीर मात्रै हो हामीले देखेको, जानी का होला जानी का होला, उनै सामलाई थाहा होला जानी का होला, उनै सामलाई थाहा होला जानी का होला, एक दिन त जानी